0: अगर आपको शक है कि आपके पड़ोसी किसी मुश्किल में हैं, कोई चोर या डाकू इनके घर में घुस गया है या इनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। आपके इस अमल से आपके पड़ोसी की जान या इनका साजो सामान बच सकता है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: From the heart of Bedfordshire in Luton, you're listening to Inspire FM on 105.1 FM and globally at www.inspirefm.org.
2: I have wisdom.

0: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
1: I have

0: शायरी और जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 8 o'clock.

0: ज्यादा बोध हो वहां उम्र भर की रिफाकत निप जाने की कम ही तवक्को हो सकती है। इसलिए इस्लामी कानून ऐसे जोड़ लगाने को नापसंद करता है, न इस बिना पर कि फरीकैन में से एक शरीफ और दूसरा कमीन है, बल्कि इस बिना पर कि हालात में ज्यादा बैचन फर्क व इख्तलाफ हो तो शादी ब्याह का ताल्लुक कायम करने में अजवाजी जिंदगियों के नाकाम हो जाने का ज्यादा इम्कान होता है।
1: अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है,
0: यानी ये बात अल्लाह ही जानता है कि कौन फिल वाक़े एक आला दर्जे का इंसान है और कौन औसाफ के लिहाज से अदना दर्जे का है। लोगों ने बतौर खुद आला और अदना के जो मेयार बना रखे हैं ये अल्लाह के यहाँ चलने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि जिसको दुनिया में बहुत बुलंद मर्तबे का आदमी समझा गया हो वो अल्लाह के आखिरी फैसले में कमतरीन खलायक करार पाए, और हो सकता है कि जो यहाँ बहुत हकीर समझा गया हो वो वहाँ बड़ा ऊंचा मर्तबा पाए। असल अहमियत दुनिया की इज्जत व जिल्लत की नहीं बल्कि उस जिल्लत व इज्जत की है जो खुदा के यहाँ किसी को नसीब हो। इसलिए इंसान को सारी फिक्र इस अमर की होनी चाहिए कि वो अपने अंदर वो हकीकी औसाफ पैदा करे जो उसे अल्लाह की निगाह में इज्जत के लायक बना सकते हों।

तो आग कम नहीं होगी, आग और ज्यादा हो जाएगी। फलन नजीदकुम इल्ला अजाबा, अजाब बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। और हिजारा जो है ये गंधक के पत्थरों के लिए कहा जाता है, सल्फर। और सल्फर भी जब जले तो, कभी सल्फर वाला पानी देखा आपने चश्मों से निकलता, कितना शदीद गर्म पानी होता है, हाथ नहीं डाला जा सकता। तो वो पत्थर जो खूब भड़केंगे और ऊपर से इंसान भी भड़केंगे, आप सोचे थोड़ी देर के लिए अगर आग पे हाथ नहीं रख सकते तो उसके अंदर जलना तो क्या, और जल के जिस्म से शोले अगर निकल रहे हो क्या आलम होगा। और इद्दत लिल काफिरीन, वो तैयार की जा चुकी काफिरों के लिए जो तौहीद और रिसालत का इनकार करते हो। तो ये जो आयात हैं ये दरअसल एक तरफ अल्लाह सुबहानु ताला की वहदानियत के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह का सबक देते हैं कि सिर्फ अल्लाह को इलाह मानो, और दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे या नहीं, इसके लिए गवाही उस दौर में भी कुरान था और आज भी क्या है, कुरान। और ये याद रखिए कि ईमान और कुफर के बीच में आज मेयार कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत से लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन सिर्फ अल्लाह को मानने वाले मुसलमान नहीं कहला सकते जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना माने, कलमे के दूसरे हिस्से को ना माने। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही फर्क हैं ईमान लाने और ना लाने के बीच में। तो आप पर ईमान बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए दलील क्या दी गई कि अल्लाह कौन है जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हारा रिस्क उतारा, आसमान जमीन बनाया, वो है अल्लाह तुम्हारा माबूद। अब दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल होने की दलील क्या है, कुरान। सूरत यासीन के शुरू में आता है यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नक लमिन अल मुरसलीन, कसम है कुरान हकीम की आप रसूलों में से हैं। और कसम गवाही के लिए होती है, कुरान गवाह है, हिकमत वाला कुरान, कि आप दरअसल भेजे हुए हैं, अल्लाह ने आपको भेजा है। क्योंकि कुरान जैसी कोई किताब 1400 साल से कोई और ला ही नहीं सका, कोई ऐसी चीज लिख ही नहीं सका। और किस दौर में उतरी आप सोचिए जरा, ना वो प्रेस का दौर था ना वो लिखने वालों का, और अरब के मक्का के शहर में तो पढ़े लिखे लोग वैसे ही ना होने के बराबर थे, उनको पढ़ने लिखने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, आज भी नहीं है ज्यादा जी। तो उस दौर में भी उनके यहाँ और बहुत सी खूबियां थी लेकिन पढ़े लिखे लोग कम थे। ऐसे में एक किताब उतारी गई जिसकी हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया, उसे किस पे लिखा गया, खजूर की छाल पे, पत्तों पे, हड्डियों पे, चमड़े पे, टुकड़ों पे, मुख्तलिफ चीजों के टुकड़ों के ऊपर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो एक जिल्द में अभी नहीं महफूज हुआ था, बिखरी हुई थी मुख्तलिफ चीज़ों में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उसको जमा किया था और फिर सारा एक जगह पर लिखवाया, और फिर हज़रत उस्मान के दौर में उसकी ऑफिशियल कॉपीज़ बनी और मुख्तलिफ इलाक़ों में गई थी, और फिर आज हमारे पास तो रंगा रंग शक्लों में छपा हुआ मौजूद है। और इसमें 1400 साल से कोई चेंज नहीं आया, एक लफ्ज़ भी ना इसका निकला है और ना ही इसमें कोई दाखिल हुआ है। ये कुरान गवाह है ओरिजिनल सोर्स कि जिस पर ये आया, जिसने ये पेश किया वो सच्चा रसूल है। क्योंकि इबादत हो नहीं सकती जब तक के हम अल्लाह के लिए खालिस ना हो और जब तक के तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ना हो। तो इसलिए साथ ही रिसालत को साबित किया गया है, वबशर और खुशखबरी दे दो, किसको, अल्लदीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती और उन्होंने नेक अमल भी किए। तो नेक अमल कौन से नेक अमल है, जिसमें नंबर एक नियत अच्छी हो और नंबर दो सुन्नत के मुताबिक हो। इसके लिए हमें इखलास चाहिए और इल्म चाहिए। क्या चाहिए, इखलास और इल्म।

0: तो किसी आदमी ने कहा ना कि जी ये गंजे क्यों हो गया, तो उसने कहा यार बस फिक्र बहुत करता था मैं। उसने कहा किस बात की फिक्र, कहता है बस बाल गिरने की फिक्र। तो उन्होंने कहा कोई दवाई दारू कुछ और के, कहते हैं नहीं बस फिक्र से ही फारिग नहीं हुआ, तो बंदा फारिग हो गया। तो हमें कुछ पता ही नहीं है बेचारे, हम बहुत लोएस्ट मेंटल कैलिबर के जी, 200-400 साल से हमने कुछ नहीं किया। हमने इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर, हमने फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर, हमने लोगों की इनेट एबिलिटीज़ उनके गिफ्ट्स के ऊपर बना के सिस्टम नहीं बनाए। ह्यूमन रिसोर्स में हम बर्बाद हैं। घर में हमने लोगों को प्रॉपर ये प्यार मोहब्बत और इश्क, ऑक्सीटोसिन और जज्बाती किस्म के वो जो हमारे हार्मोन्स हैं उनके चक्कर में हमने गलत औलाद पे गलत किस्म का प्रेशर डाल के उनको, जो उनके गिफ्ट थे ही नहीं, उस किस्म के अपने कॉम्प्लेक्सेस उनमें डाल के उनसे और काम करवा के गलत टाइम पे गलत लोगों को बुलवा के उनसे शादियां करवा के उनके मथे मार के, ये जो हमने सोसाइटी बनाई है इसकी बहुत सख्त सज़ाएँ हैं रब के पास, बहुत सख्त सज़ाएँ। दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया तो उसकी फिर सज़ाएँ, और हम कहते हैं जी हमने तो ये भी किया, हमने तो वो भी किया, हमने कुछ भी नहीं किया। जब हमें पता लग गया कि क्या करना था क्या नहीं करना था, उस वक्त हम पे इतना बोझ पड़ चुका था। वो जो भाई साहब ने 26 साल बाद जो डिवोर्स दी ना, 26 साल की ज़िंदगी के बाद, अभी वो उनकी एक पर्सनैलिटी थी, एक ज़िंदगी है, एक ख्वाहिशें हैं, कुछ मामलात हैं, वो अब कहीं पे भी जाएंगे तो वो इतना बड़ा ख्वाहिशात का बोझ उठा के लेके जाएंगे और आगे फिर उनको वही मिलना। तो ये काम जो काम 6 महीने साल में करने और समझने का है, उसके लिए अगर आप 25-26 साल लगाएंगे तो जाहिर बात है फिर आपने ज़िंदगी में तो बूथा ही बना के फिरने ना।
1: और लाला ये हम सब करते हैं, जैसे जो चीज जल्दी मैनेज हो सकती है उसको खींच के इतना लंबा कर देते हैं,
0: क्योंकि डर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, माँ बाप की इज्जत की वजह से, ये सारे बखेड़े। एक आदमी खुश, मेरी बेटी खुश ही नहीं है, मैं लानत भेजता हूँ मार लोग सोसाइटी वाले क्या कहते हैं, कौन सोसाइटी, कुत्ते बिल्ले सोसाइटी की जिनको खुद नहीं पता कुछ, झूठ बेईमानी वो कार्रवाई अंदर से खोखले लोग वो क्या कहते हैं, मेरी बेटी नहीं खुश, वो तकलीफ में है, वो परेशान है, बस खत्म होगी बात। लोग कौन है, वो खर्चा उठाते हैं उसका, उन्होंने तकलीफ उठा के उसको पैदा किया है, उन्होंने उस पर खर्चा करके उसके ऊपर काम किया है, लोग कौन, मैं तो लोगों के लोग, मेरी बेटी थोड़ी है, मेरी बेटी खुश नहीं है, मेरा बेटा खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, वो बंदा या बंदी उसको डिजर्व नहीं करते। वापस हुजूर पाक ने अपनी दोनों दो बेटियाँ थी, जब इस्लाम आया उन्होंने कहा अपने दो दामादों से उस वक्त जो थे कि आप इस्लाम में आए, उन्होंने कहा हम नहीं आते, उन्होंने कहा वापस आओ, दोनों बेटियाँ वापस ले लीं अपनी, ख़त्म। उनसे ज्यादा इज्जत है हमारी, उनसे ज्यादा लोग हम पे नजर रखे बैठे, तो हम वीक है ना, हम हमारा कुछ भी नहीं है बेचारों का। और अगर आप ऐसे हों भी और आपकी बेगम ऐसी ना हो तो फिर एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए कहता हूं दो बंदे एक मकसद, कुछ भी हो जाए एक मकसद, जब तक ये नहीं है वो एनवायरमेंट में पावर मर्द के अंदर और औरत के अंदर आ ही नहीं सकती, उस फैमिली के अंदर मॉरल करेज आ ही नहीं सकती, ये सब चीजें मिलकर आती हैं, ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। पहले आप वो बंदा बने फिर देखें कि दुनिया आपसे कितनी इज्जतें मोहब्बतें करती है, पहले आप वो इंसान वो औरत बने जिसके लिए कैसे कैसे कदरों में लोगों ने हम तख्त ताज छोड़ देते हैं, वो कोई लोग होते हैं, हम लोग लोग नहीं है, हम लोग हम लोग हैं, हम लोग समझती हैं आप। दो किस्म के हम लोग होते हैं, चले आज आपको हम लोग, एक काले रंग का छोटा सा था जिसमें बहुत सारी वो, उसको कहते हैं गाँव में होता था गरीबों का फल जो होता था छोटी छोटे काले काले, वो हम लोग कहते थे, और एक हम लोग पता है हम किसको कहते हैं,
1: वो बड़ा ऑरेंज वाला,
0: हाँ पर्सिमन मेरा ख्याल उसको कहते हैं शायद,
1: हाँ जी हाँ। जो यहाँ $5 का एक मिलता है,
0: हाँ मैं उसको मिक्स कर जाता हूँ पार्मेजान के साथ। अच्छा। हर दफा आगे पीछे हो जाता है मेरे से, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं ना, आगे पीछे आर को आगे पीछे करने उनके दिमाग में होता है ये, और कुछ होती है नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो वो चाहता हूँ, फलां चाहते हैं, व्हाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट इट, ये वही वाली बात है, मेरे घुटने में दर्द नहीं है, मैं रोज आपको मिलके बताता हूँ सजीला जी मेरे घुटने में दर्द नहीं है। अरे भाई वो ठीक चल रहा है, मैं क्यों बताऊँ, जब तक मैं लंगड़ा नहीं रहा दुख नहीं हो रहा। तो लोग मैंने देखे वही बातें रिपीट करते रहते हैं, हम तो ऐसे हैं आप तो वैसे हैं, फलां तो ऐसे हैं, ये तो अच्छा आप तो ये हैं हम तो ये हैं, बट किसने ये बातें तो हो चुकी, कोई डम है जिसको एक बंदे को बार बार बताओगे आप, आपका दिमाग स्लो चलता है तो आप समझते हैं बाकी दुनिया भी स्लो चलती है, इस तरह थोड़ी होता है। तो जो जो भी लोग बार बार चीज़ें करते हैं ना, वो उनका वो चाहते हैं, और अगर फिर कोई और एक और बात भी बताऊं, आप कुछ चाहते हैं और उसके हिसाब से फिर आप ऑपरेट नहीं करते या प्लान नहीं करते, तो फिर वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिल सकती, इसमें खुदा का कोई अमल दखल नहीं, ये आपका काम है। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग, क्या आपको खाना पसंद होता है, आप निहारी बनाना चाहते हैं, आप खा आप जाके बनाते हैं, तो खुदा आपको रोकता है निहारी खाने से, रोक सकता है नहीं, वो आप खाना चाहते हैं आप जाओ बनाओ खाओ, आप उसमें अल्लाह को हम खुद ले आते हैं बीच में कि मैं मतलब मुझे रोक ले खाना खाने से, क्यों रोके वो आपको, ये तो आपके अपने दिमाग के कीड़े हैं। वो अगर रोकना चाहता है तो फिर शदाद ने जन्नत बना ली

0: उसको पैर उसने नहीं रखने दिया जन्नत में अपनी बनाई हुई, तो नहीं रखने दिया उसने, तो लेकिन उसने तो अपनी पूरी कोशिश की, उसने तो पूरी जन्नत बना दी थी। खत्म हो, आप तो बनाओ ना पहले। वो लोग कहते हैं शदाद बड़ा बुरा आदमी था, शदाद जितना काम तो करके दिखाओ, जन्नत उसने ऐसी बनाई उसको उठा लिया, इतनी आला बनाई उसने। ही वाज अ क्रिएटिव मैन, उसने ही एटलीस्ट ही डिड व्हाट ही वाज वांटिंग टू डू। हम में से तो किसी ने वो काम भी नहीं किया, कुछ तो बनाओ। यहाँ तो हम एक थोड़ा सा रिश्ता नहीं बना सके, एक दोस्त नहीं है हमारा, एक गमगुसार नहीं है हमारा, एक हमारा बंदा नहीं जिसको हम राज की बात बता सकें, किसी से हम कुछ शेयर, हर एक से हम डरे हुए हैं। क्या औकात है हमारी? देखें सच में हमारी कोई औकात औकात नहीं होती बेचारे, हम बहुत माठे, बस ऐसे जैसे समझें कि यू नो यरकान हुआ हुआ है हमें, पीली आंखें पीली बूथी के साथ भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। आपसे कोई सलाम दुआ ना रखे मोहब्बत कैसे करे आपसे कोई? इंसान के पुत्र बने पहले आप, करेंगे मापते हैं आपसे?
1: ज्यादा नहीं, मुझे लगता है आपने कोई स्पेशल दवाई ली है।
0: नहीं, आपकी वजह, आप और हीरा सिंह के आने की वजह से हुआ है। मेरे तो बचपन में भी कभी नहीं कहा मेरे से कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरी तो जान ही छुड़ाना मुश्किल हो गई है लोगों से, बचपन से ही मेरी जान नहीं छोड़ रहे, मेरी तो खलाएं मुझको नहीं छोड़ती थी चिमट चिमट के मुझको, मैं कहता करे परे हो जाओ दांत साफ करके आओ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे, मुझे तो जान जो होता था मैं जान कैसे छुड़ाऊंगा इनसे। आपको पता है पठानों के कल्चर में ना वी आर नॉट वेरी फिजिकल, लेकिन हमारे साथ सब कुछ बेचारे बचपन से ही रिश्तेदार सारे बहुत फिजिकल प्यार मोहब्बत में थे, तो मैं कहता यार मैंने दूर हटना है इन लोगों से, ये स्पेस में इंट्रूड कर रहे हैं हमारे।
1: बस वज़ादल आप इतने प्यारे लगते हैं सबको, वो मेरा ख्याल से यही वजह है।
0: और इंसान और किसी को, किसी एक बंदे को तो लगे ना, सबको तो कोई भी नहीं कह रहा, सब लोग तो ऐसे अजाब बन जाते हैं जान का, लेकिन इंसान तो प्यारी चीज़ है ना।
1: इसका मतलब है आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो सबको अच्छा लगे।
0: ये याद रखिएगा जिंदगी में जिस इंसान को भी प्यार मिल रहा है ना, ये रब की मेहरबानी है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी आदमी जब आपसे जिंदगी में कहता है ना हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, या हम आपके लिए आपको बहुत इज्जत करते हैं, या हम आप फलां करते हैं, इसका मतलब है वो दूसरा बंदा जो आपसे मोहब्बत कर रहा है वो कोई कमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन है उसका, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, या आपकी ज़ात की कोई चीज़ हिस्सा है, या आपने उस पर काम किया है अपने ऊपर, और उस वजह से आपको इतनी इतने प्यार मोहब्बतें मिल रहे हैं इंसानों को। ये जिस इंसान को समझ आ जाए, आप वो बटन प्रॉपर आपको समझ आ जाएगी, तो फिर हर आदमी को प्यार मिल सकता है। अगर आपको किसी को भी लगता है कि जी आपको प्यार नहीं मिला, तो कुछ चीज़ें जो आप करेंगे तो वो करने की वजह से आपको हर कोई प्यार करेगा, बेख्तियार हो जाएंगे, ठीक है? आपने पिछले सारे आपके गिले शिकवे माफ हुए, जाइए आज हम फिर आपसे खुश हैं, ठीक है?
1: ठीक है, सलामत से अल्लाह,
0: सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेहरबान हमारे साथ रेडियो आजाद ऑन एयर।
2: हेलो अर्का जी,
0: हेलो मैम,
2: बस अभी हाय हेलो कहने के लिए इतना ही टाइम बचा है,
0: फिर भी हम आपकी बात सुन सकते हैं।
2: आई हैड कपल ऑफ पॉइंट्स, वो ऑस्ट्रेलिया वाले भाई थे ना, उनका कॉल मैं सुन रही थी, फिर मुझे कॉल आ गया, सो आई वाज आई कुडंट कॉल यू बैक, बट एनीवे, सो यू नो कपल ऑफ थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर नोटिसिंग अबाउट योरसेल्फ कि यू गेट एंग्री और ये सब, सो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द होल बंच, बिकॉज सम पीपल दे डोंट इवन नोटिस दीस थिंग्स दैट हैपन टू देम, सो these days you know in my spiritual journey also they always say ke, if you're noticing these things then it's already you are one step ahead. Secondly kehte hain ki you should never feel guilty about anything, because jo ho gaya wo ho gaya, I mean there's nothing you cannot undo that, and it hinders your progress. आपका जो प्रोग्रेस होता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, उसमें थोड़ा हिंडरेंस आ जाता है, बिकॉज यू आर कभी ये भी होता है ना कि यू आर नॉट एबल टू प्रे, जैसे आपको कहा गया कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे इतना टाइम करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो इफ यू आर नॉट एबल टू डू देन इट्स ओके, यू शुडंट फील गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज इट विल हिंडर, इट बी इन द बैक ऑफ योर माइंड एंड विल कीप हिंडरिंग यू, तो इससे अच्छा ये है कि ठीक है नहीं हो सका मेरे से, एंड आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस, आई हैड ऑल दीज अदर कमिटमेंट्स, ओके आई कैन डू इट टुडे, तो आपने भी यही बोला था, बट दिस इज अ स्लाइटली न्यूएंस्ड पॉइंट कि वो आपके बैक ऑफ योर माइंड में जाके वो स्टक हो जाता है, एंड देन आप करने भी बैठोगे वो काम या जो भी करना होता है, तो आपके माइंड में ये आ जाएगा अरे मैंने इतने दिन नहीं किया था ये, और यू नो आई एम बिहाइंड, आई फेल बिहाइंड ऑन दिस, so and then it'll bother you. Mm-hmm. So ek baar aapne socha ki theek hai ho gaya, just think about it and say ki okay it was a mistake, I'll do the best I can. That's why in all the religions they say you should do the best you can. Abhi aapka best yahi hai at this point, given your situation, given everything else.
0: Very valid point. Nice of you, ma'am. Thank you very much. Aur waqt samapt hota hai. Omega ji, baaki points ke liye inshaallah aati rahiyega. Apna zarur point dijiyega. Aakhri wala point bahut hi kamal aur valid tha. Iske upar ji zarur aapne sochna hai aur apna point dena hai. Aur aaj ka ye show yahin pe khatam hota hai. Agle show mein me time, jo ki bahut important hai. Ye me time koi selfish point ya us cheez ke liye nahi hai. Main apna me time ko thoda sa explain karunga ki me time hai kya, kyun aapne karna hai daily life apni zindagi ko behtar guzarne ke liye, aur kaise self care bhi aapki hoti hai aur ye baakiyon ke liye bhi behtar hai. Aur iske bare mein hum baat karenge Wednesday ka show. Ye me time ka part 2 hoga. Pichle show mein aap logon ne apne bahut sare points diye. Isi tarah contribution badhate rahiyega. Aaj bahut acche nayi aapko meherban awazein aur meherban log aaye, un tamam logon ka bahut bahut shukriya. Number hai studio ka 972-501-9390. Aur ab waqt to ho gaya, lekin chaliye dur se call hai, kar le lete hain. Radio Azad, you're on the air.
3: Hello ji, sat sri akal
0: ji. Wadwa ji, dekhen aapki call hum nahi miss karte, chahe waqt na bhi ho to. Hukm.
3: Thank you so much. Main ke buland ho gayi awaaz, aake program dena shuru kiya the.
0: Bilkul theek, bilkul theek.
3: And Dr. Shakila, she is such a sweet person. میں ملی تو نہیں پر میں جس ویسے سنیا میرا دل کرتا تو میں حق کرا.
0: ان شاء اللہ میں آپ والا حق ہم ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, ضرور ان شاء اللہ یہ موقع لگے گا, ہم حق پہنچا دیں گے آپ کو.
3: دیکھو اوپر والے نے چاہیا تھے
0: پرانے زمانے میں نا, جس طرح غائبانہ نماز جنازہ ہوتا سی, ہوں اِسی غائبانہ حق بھی دینا شروع کریں گے بابا جی. ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਰ ਵੀ ਲੈਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸੁਣਾਣਾ?
3: ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ.
0: ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ,
3: ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਵਾਂਗੀ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਵਾਂ.
0: ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਾਦਵਾ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ. ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਮੈਂ ਜੀ, ਆਪਕੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਦੁਆਓ ਮੈਂ, ਆਪਕੀ ਅਰਦਾਸੋ ਮੈਂ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ. ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਸਾਈਨ ਆਫ, ਔਰ ਆਪਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ. ਦੋ ਤੀਨ ਸ਼ੇਰ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈਂ, ਚਲੀਏ. ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਸਤੂਰ ਵੀ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਰੱਬ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ. ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਕੋ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਨੇ ਕਾ 100 ਦਫਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਆਪ ਤਮਾਮ ਲੋਕੋ ਕਾ. ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਰੱਬ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر. آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی رہی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: गंदम के साथ क्या आएंगे, बाले बाले बालियां होना चाहिए था, नहीं बाले बाले। ओके, अरबी में गंदम की बाली को सुम्बुला कहते हैं, ये बात अब याद रखनी है आपने, ये कुरान के अजायब में से है, सुम्बुला गंदम की एक बाली। मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, मैंने पूछा ये उसको अंग्रेजी में कहते हैं ईयर ऑफ कॉर्न और ईयर ऑफ ग्रेन, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो कहते हैं वो जो उर्दू में क्या कहते हैं, वो जो चीज़ होती है जो उसके अंदर होती है वो चीज़। तो किसी ने, प्रोफेसर साहब ने कहा बाली कहते हैं, तो बाकी सारे कहते हैं बाली तो ये वाली होती है। तो उर्दू का तो खैर अब जनाजा निकल चुका है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो मैंने एक तो तर्जुमा करना था गंदम की वो चीज़ जिसके अंदर वो चीज़ होती है, वो ज़्यादा समझ में आ जाती है आपको, वो चीज़ आसान रहती फिर। ओके, लेकिन खैर गंदम की बाल सात बालें, चलो तस्वीर से फायदा हो गया। इसका वाहिद क्या है, सुम्बुला लिखा हुआ है वहां पे सुम्बुला, लेकिन इसकी जमा अरबी में दो हैं, इस लफ्ज की जमा दो हैं, एक है सुम्बुलात और एक है सनाबिल, सुम्बुलात और सनाबिल। अच्छा, अगर मैं कहूं सबअ सुम्बुलात, सबअ सुम्बुलात इसका मतलब है सात बालें। अगर मैं कहूं सब सनाबिल, फिर भी इसका मतलब क्या है, सात बालें। कुरान में एक मकाम पर सब सुम्बुलात खुदर, सूरह यूसुफ में सात बालियों का जिक्र है, जब वो ख्वाब देखा था बादशाह ने तो उसने सात बालें देखी थी, है ना, वहां कहा सब सुम्बुलात। सूरतुल बकरा में इन्फाक की बात की जा रही है कि अगर कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उसकी मिसाल ऐसे है कोई एक बीज हो जिसकी वजह से अम्बतत सबअ सनाबिल, उसकी वजह से सात बालें उगें निकलें। लेकिन वहां पर लफ्ज सुम्बुलात ने इस्तेमाल किया, क्या किया, सनाबिल, लेकिन नंबर एक ही है, सूरह यूसुफ में भी सात और सूरह बकरा में भी सात, लेकिन फिर भी फर्क क्या है, एक में एक तरह की जमा इस्तेमाल की, दूसरी में दूसरी तरह की जमा, बकरा में सनाबिल और यूसुफ में सुम्बुलात। यहां तक फर्क समझ आया, सवाल पैदा होता है कि इस फर्क से क्या क्या सीखते हैं हम। असल में अरबी में जमा के मामले में कुछ ऐसी बात है जो उर्दू में नहीं है, उर्दू में होता है वाहिद या जमा, अरबी में होता है वाहिद फिर तस्निया दो और फिर मुख्तलिफ किस्म की जमा होती हैं, एक तरह की जमा नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की जमा होती हैं। उसमें से दो कैटेगोरीज क्या हैं, इसको कहते हैं जमउ किल्ला व जमउ कसरा, ज्यादा वाली जमा और कम वाली जमा। यानी जमा तो है अरबी में, लेकिन कुछ जमा ज्यादा वाली और कुछ कम वाली। मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको, बहर कहते हैं समुंदर को, बुहूर जमा है, बुहूर है जमउ कसरा यानी बहुत सारे समुंदर, और अबहुर, अबहुर भी जमा है लेकिन वो है जमउ किल्ला, कम समुंदर, कम समुंदर, ये जमे एक से ज्यादा है। इसी तरह काफिर, काफिर की एक जमा है काफिरून, काफिरून वो बनिस्बत कम है, और कुफार, सुना है कुफार पहले, वो जमउ कसरा है, वो ज्यादा है, और कफरा उससे भी ज्यादा है। तो उसमें तो तीन आ गए, काफिरून, कुफार और कफरा। यहां पर दो जमा है, एक कम है और एक ज्यादा है, सुम्बुलात कम है और सनाबिल ज्यादा है। कुरान भी क्या अजीब कलाम है, दोनों के बारे में एक ही अदद है, सात और सात, लेकिन कुरान ने एक अजीब अंदाज में बताया कि सात सुम्बुलात किसी ना किसी तरह कम है और सात सनाबिल किसी ना किसी तरह ज्यादा है। अब समझने की कोशिश करते हैं, बादशाह ने ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर क्या थी, सात सात बालियों की ताबीर क्या थी कि कहत आने वाला है, यही ताबीर थी ना। और जो उगेगा उसको बहुत बचा बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, वो कितना है, कम है। तो कम के सियाक में कहा सुम्बुलात, सुम्बुलात। दूसरी बात हो रही है बकरा में, इंसान एक बीज के बराबर खर्च करे, अल्लाह ताला कहते हैं कि उस एक बीज से मैं सात सनाबिल निकालूंगा और उनमें से हर बीज में, उससे जो हर बीज, हर सुम्बुले के अंदर 100 बीज होंगे, यानी वो दोबारा डाले जाएंगे, फिर मजीद, फिर मजीद, फिर मजीद। ये कम की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है। यहां सनाबिल 7 उधर है, 7 इधर है, लेकिन मौजाना तरीके से अल्लाह ताला वहां पर सुम्बुलात और यहां सनाबिल। और एक सूरत मक्की है, यूसुफ मक्की है, और बकरा मदनी है। और इन्फाक की आयात, कहा जाता है कि इन्फाक की आयात बहुत बाद में जाके मदीने में मक्की आयात में आई है, रिवा की आयात के करीब। यानी इन आयात में कई सालों का फर्क है, ना सिर्फ किताबी एतबार से इनमें फर्क है, कई सालों का फर्क। किसी को याद रहेगा कुछ साल पहले मैंने ये बात कही थी और ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो उसके मुकाबिल यहां पर मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, ये मुमकिन है इंसान के लिए। मुझे ये नहीं याद मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था आज अभी से 30 सेकंड पहले, मुझसे कहें आपने भी क्या कहा था, मैं खुतबे के बाद मैं अंदर बैठा था तो वीडियोग्राफर ने मुझसे कहा खुतबे का टाइटल क्या था, मैंने कहा मैंने क्या बात की थी मुझे तो नहीं याद। लेकिन अल्लाह ताला का कलाम वो इंसान की जबान से निकल रहा है, लेकिन कलाम इंसान का नहीं है, वो जिसके पास है उसको मालूम है कौन सा लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होना है। सुभान अल्लाह, टाइम तो ख़त्म हो गया लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं एक और नेमतों के लिए 2 मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल। नेमत का लफ्ज उर्दू में है निअमा, अरबी में कहते हैं निअमा, निअमतुन। उसकी भी 2 जमा है, अगर 2 जमा होगी तो एक होगी कम के लिए, एक होगी ज्यादा के लिए। ये मैं पहले समझा दूं, जिस तरह सुम्बुलात और सनाबिल था ना, वही बात यहां पर होगी। लेकिन इसकी 2 जमा क्या है मैं दिखा देता हूं आपको, निअम और अनउम, निअम और अनउम। अनउम कहते हैं नेमतों के लिए लेकिन कम, और निअम कहते हैं नेमतों के लिए मगर ज्यादा। एक है जमऊ किल्ला, दूसरी है जमऊ कसरा। अल्लाह ताला अपनी नेमतों के बारे में कहते हैं वह असबग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी नेमतें उडेल दी जो जाहिर हैं और जो बातिन हैं। अभी मैं तर्जुमे की बात कर रहा हूं, क्या कम नेमतों का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए या ज्यादा नेमतों का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि कहा है जो जाहिर हैं और जो बातिन हैं, जो मादी हैं, जो गैर मादी हैं, जो मुस्तकबिल में है, जो भी हाल में है, जिनका हमें शऊर है, जिनका हमें शऊर नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हो गई। तो निअम जमऊ कसरा। दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, सूरत अन्नहल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हुए अल्लाह ताला कहते हैं शाकिरन, कि वो शुक्रगुजार थे, ली अनउमिही, अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्रगुजार थे, अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। लेकिन यहां इस्तेमाल किया अनउम, अनउम कहते हैं बहुत कम नेमतों को। तो अगर लफ्जी तर्जुमा करूंगा ना तो कहूंगा अल्लाह ताला की कुछ नेमतों के शुक्र गुजार थे। सुनने में अजीब लगता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी शुक्र गुजार शख्सियत, वो तो बहुत सारी नेमतों के शुक्र गुजार होंगे ना, तो यहां लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, कुछ नेमतों के शुक्र गुजार थे। हिकमत क्या सिखाई, जब अल्लाह अपनी नेमतों की बात खुद करता है ना, जब नेमतें उडेलता है तो सारी नेमतों की बात करता है, जब इंसान शुक्र करने की कोशिश करता है चाहे कि वो इब्राहिम ही हो, तो इंसान की सलाहियत ही में नहीं है कि इतने छोटे, इतने कम सालों में अगर वो हर लम्हा भी शुक्र में गुजार दे तो फिर भी बमुकाबिल तमाम नेमतों के जो उसको दी गई उसके मुकाबले में वो फिर भी कुछ थोड़ी सी ही नेमतों का शुक्र अदा कर सका। उसकी सलाहियत में ही नहीं था कि वो इतनी सारी नेमतों का शुक्र अदा कर सके। तो कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में शाकिरन ली अनउमिही, और उससे हमें क्या सिखाया, हमारा शुक्र कभी काफ़ी नहीं हो सकता, क्योंकि नेमतें हमेशा ज़्यादा होंगी, हमारा शुक्र हमेशा कम होगा। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कम है, और वो सारी ज़िंदगी शाकिरन इसम इस्तेमाल किया उनके लिए, यानी वो हमेशा शुक्र की हालत में थे, फिर भी अनउम, उनके शुक्र में कोई कमी नहीं है, ये इंसान की कमी है। इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर सके। तो शाकिरन ली अनउमिही, कभी किल्लत का इस्तेमाल, कभी कसरत का इस्तेमाल। अजीब जो उदास करने वाली बात पता है क्या है, तर्जुमे में आप पढ़ोगे इस आयत को या उस आयत को, क्या लिखा होगा, नेमतें, उधर सात बालियां, इधर सात बाले, इधर सात बाले, को फर्क नजर आएगा तर्जुमे में? नहीं जी, मैंने कुरान तर्जुमे पढ़ा है, मुझे समझ में आता है। जी समझ में तो आता है, लज्जत नहीं आती कुरान की, भाई खूबसूरती नहीं आती। और ये चीज़ इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कल के सेशन में, और नहीं हाँ कल के सेशन में। अभी कल हमने एक सेक्शन शुरू किया था जिसमें हम बात कर रहे थे अल्फाज के इस्तेमाल की, और जिस तरह बारीक लफ्ज़ एक जगह पे सही जगह पे इस्तेमाल किया गया है उसका एक मकसद है। और अगर आपको ऐसा भी लगे कि इसी तरह का लफ्ज़ कहीं और भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो पता लगेगा कि वहाँ पर इस्तेमाल उसी का फिट होना था, यहाँ पर इसी का फिट होना था। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कुरान में, मैंने कुछ चुनी आपके लिए सोचने के लिए। तो आज इस मिसाल में हम जन्नत और जहन्नम का जो आपस में तकाबुल है, कभी कभी इन दोनों का एक साथ ज़िक्र आता है, एक का फिर दूसरे का। कुरान ने ये बात भी की है कि कुछ सूरतों में जन्नत के बारे में बहुत लंबी बात और जहन्नम के बारे में एक दो आयात, और कभी कभार ऐसा भी किया है कि जहन्नम के बारे में बहुत सारी आयात और फिर जन्नत के बारे में एक दो आयत, ऐसा भी होता है कुरान में। और कभी इसके लिए एक आयत, इसके लिए एक आयत, यानी हर सूरत का अपना एक ख़ास स्टाइल होता है, मकसद होता है, और उस मकसद के तहत अल्लाह ताला फैसला करते हैं कि इसमें कितना वज़न किस बात पर ज़्यादा डाला जाएगा। उसकी एक मिसाल सूरत निसा से ये ली गई है, और यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं दिल का हदूदुल्लाह, अपने कुछ अहकाम बयान करने के बाद कि ये अल्लाह ताला की हदूद हैं, वो अल्लाह ताला की हदूद हैं, वमन युति अल्लाह व रसूलहु, और जिसने अल्लाह ताला की और उसके रसूल की इताअत की, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार खालिदीना फीहा, वो उनको जन्नतों में डाल देगा जिनके नीचे से दरिया बह रहे होंगे। इनके नीचे से दरिया बहने से मुराद है कि आप किसी पहाड़ी के ऊपर हैं और उसके नीचे वाटरफॉल है, और यानी ये नहीं कि आपके पैरों के नीचे से या बाघ के नीचे से दरिया निकल रहा है, बताया जा रहा है कि आपकी ऊंची एलिवेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है और उसके नीचे आपके दरिया चल रहे हैं, राइट। जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार, फिर कहा खालिदीन फीहा, खालिदीन जमा है, ऊन और ईन जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं अरबी में, तो यहाँ हाल के तौर पे जमा इस्तेमाल किया गया है, यानी वो सब उसमें हमेशा के लिए रहेंगे। जन्नत वाले लोग अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा के लिए रहें। उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ की बात की, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, और जिसने भी अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी की, व यतअद्दा हुदूदहु, और वो उसकी हदूद से आगे चलता चला गया, तजावुज़ किया हदूद से उसने, फिर कहा युदखिलहु नारन, वो उसको आग में डालेगा, खालिदन, अकेला हमेशा रहने के। तो जब जन्नत में बात की थी तो कहा था इकट्ठे, और जब जहन्नम की बात की तो कहा अकेले, खालिदीना नहीं कहा इस दफ़ा, और मकामात पर खालिदीना कहा है, लेकिन इस ख़ास मकाम पर सूरतुन निसा में अल्लाह ताला ने खालिदन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खालिदन फीहा। तो इसको समझने की ज़रूरत है, ये एक, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डिलिबरेट, जानबूझ कर दो चीज़ों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया गया है कि इंसान का गौर उस तरफ जाए कि ये क्या हुआ यहाँ पर। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी बात करते हैं और आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ पर गौर करना पड़ता है। इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आप किसी छुट्टियों पे जाते हो, वेकेशन पे जाते हो किसी खूबसूरत जगह, लेकिन अकेले जाते हो, रेस्टोरेंट में गए, कितनी कितनी की टेबल, एक की टेबल जी। आप होटल में गए, एक का कमरा, बाहर टूर पे गए, कोई व्यू देखने, कोई माउंटेन देखने, कोई वाटरफॉल देखने, कोई स्कीइंग कर, अकेले जा रहे हो, डिप्रेसिंग होता है कि नहीं? और अगर आप गए भी हो अकेले, तो मुझे तो काफ़ी ट्रैवल करने का मौका मिला, वो बहुत दफ़ा फैमिली के साथ भी गया, बहुत दफ़ा अकेला भी गया। और जब अकेला गया तो जो मेरे होस्ट हैं वो कहते हैं चले हम आपको फ़लानी जगह लेके जाते हैं, फ़लानी जगह लेके जाते हैं, इस शहर में ये बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है। मैं कहता नहीं, मुझे बस काम करना है। और यानी बहुत सारे दुनिया के शहर ऐसे हैं जिनका मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं गया हूँ, मुझे होटल पता है, एयरपोर्ट पता है, और जो कन्वेंशन सेंटर है वो पता है, और कुछ नहीं पता, यू नो। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ नहीं हो, दोस्त के साथ नहीं हो, तो बाहर जाकर टूर करना और मज़े करना, उसका मज़ा ही नहीं है दोस्तों के बाहर उसका। अगर आप जाओगे भी ना तो क्या करोगे, वहाँ जाके वहाँ से फ़ोटो लोगे, और फ़ोटो लेके फ़ौरन क्या करोगे, विश यू वर हियर, आप यहाँ पे, काश के तुम यहाँ पे होते, इस जगह देख के तुम बहुत याद आ रहे हो, तुम बहुत याद आ रही, राइट? यानी मज़े की चीज़ का कोई मज़ा ही नहीं जब तक कंपनी ना हो, मज़े की कंपनी ना हो, यू नो। तो अल्लाह ताला ने जन्नात में हमें बड़ी अजीम चीज़ें भी दी हैं, लेकिन वो सारी अजीम चीज़ें इतनी अजीम ना होती अगर हम अकेले बैठे होते। अब देखो, कुछ लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, हाँ, अब स्पोर्ट्स अगर अकेले बैठ के कोई मैच देख रहे हो, इन्जॉय तो करोगे, लेकिन दोस्तों के साथ बैठ के मैच देख रहे हो, अलग एक्सपीरियंस है कि नहीं? वही एक ही रोड ट्रिप है, आपने इस शहर से उस शहर जाना है, आप अकेले ड्राइव कर रहे हो, वही रोड ट्रिप है, आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फैमिली के साथ नहीं, वो तो अजाब की एक शक्ल है, लेकिन दोस्तों के साथ आप सफर कर रहे हो, उसका अपना मजा है, वो सफर याद रहता है, आपको प्रोग्राम याद कम रहेगा, वो सफर आपको याद ज्यादा रहेगा, जो हंसी मजाक रस्ते में होता है, जो कंपनी होती है। तो अल्लाह ताला ने खालिदीन में इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि आप जन्नत में वो चीजें, तो दरिया तो है, लेकिन दरिया में दोस्तों के साथ एक को धक्का मार के उसको अंदर घुसा दिया, फिर खुद भी घुस गए और हंसी मजाक किया, यू नो, यतनाज़ऊना फीहा कासन, एक दूसरे से कब छीन रहे होंगे, खींच रहे होंगे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होंगे। तो ये जन्नत, जन्नत की एक बड़ी खूबियों में से है कि वहां हम इकट्ठे होंगे और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे होंगे। दूसरी तरफ जहन्नम में बहुत सारे अजाब हैं, लेकिन उन अजाबों में एक मजीद अजाब का इजाफा पता है क्या है, कि वहां हर इंसान को लगेगा कि वो अकेला है, अकेला है। यहां भी अजाब की शक्लों में एक अजाब की शक्ल है जेल, दुनिया में कैद, और कैद में सबसे तकलीफ देने वाली कैद पता है किसे, उसे क्या कहते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। किसी को किसी कैद खाने में डाल दो, उसको बाकी कैदी की आवाज भी नहीं आ रही, किसी को उसकी बात सुन भी नहीं रहा, वो अकेला है, उसको अकेले रखो, सालों अकेले रखो, 24 घंटे में से 23 घंटे अकेले रखो, नीचे से खाना स्लिप कर दो, वो पागल हो जाएगा। यानी उसको बाहर से टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, उसका अकेलापन उसको टॉर्चर कर रहा है। और अकेलापन ऐसी अजीब चीज़ है, मैं तो इस बारे में और भी अब सोचने लगा हूँ, क्योंकि मैं एक स्कूल में गया था, वहाँ पर मेरा बच्चों के साथ मेरी कुछ बात हो रही थी, तो एक तरफ तकरीबन 300-400 लड़के थे और एक तरफ 300-400 लड़कियाँ थीं। तो हमारे देसी स्कूल था एक, जहाँ था उसकी खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे तर्ज का स्कूल था। तो प्रिंसिपल और पेरेंट्स और न्यूज़पेपर वाले लोग और मीडिया वाले लोग सारे पहली रोज में बैठे हुए थे और पीछे सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो बहुत वो जो हमारे, मैंने आपको बताया था, जो शुरू में तारुफ होता है ना, 15 लोग तारुफ करने आते हैं एक दूसरे का, अब हम बुलाते हैं स्टेज पर अगले तारुफ करने वाले, जो उससे अगले तारुफ करने वाले को बुलाएंगे। तो उन्होंने सारे वो जश्न किए, फिर उन्होंने मुझे बहुत बड़े फूल पकड़ाए, अब मैं कहाँ रखूँ इन फूलों को, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और फिर अच्छा, वो फूल वो लेके भी गए, दे भी दिए, फिर ले भी गए वो, तो वो आसानी हो गई मेरे लिए। फिर उन्होंने आखिर में जाके अब मुझसे कहा कि आप बच्चों को एक घंटे का लेक्चर दें। मैंने कहा बच्चे पहले कम अजाब में, मैं उनको एक घंटे का लेक्चर दूँ? मैंने 10 मिनट बात की बच्चों से, फिर मैंने कहा अब मैं बच्चों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल फ़ौरन स्टेज पे आ गए, जिसको सवाल पूछना है वो स्टेज पर फौरन ये साइड पे माइक लगाए हुए थे, उधर आके सवाल पूछ ले। कितने बच्चे उठे होंगे पता है आपको? वो सजाए मौत है। उसने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लगा, उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, उसके टीचर को अच्छा नहीं लगा, बल्कि वो जा भी रहा होगा ना ठीक से देख के। ऐसे ही है ना, किसी अगर उसके जहन में सवाल होगा भी, उसकी जरूरत ही होगी पूछने की। तो मुझे पता था इस बात का, तो मैंने कहा देखें ऐसा करें, कैमराज वगैरह ऑफ कर दें, मैं माइक भी ऑफ कर रहा हूँ, मैं इधर बच्चों के सेक्शन में जा रहा हूँ, आप में से किसी ने पूछना हो ना सवाल, पेरेंट्स और टीचर्स वगैरह आप पीछे रहें, आप साथ ना आए। आप में से जिसने कोई सवाल पूछना है आप मुझसे पूछ लें। और फिर मैं वहाँ से होके आई वेंट टू द बॉयज सेक्शन, यहाँ 3 घंटे लगे, वहाँ 3 घंटे लगे, और वो छोड़े ही ना, पूछे जाए पूछे जाए पूछे जाए। और पहले आपको लगे कि इनकी तो बोलती नहीं है, तो इनके तो मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती इनके, और जब आप अंदर जाके आपने वो फॉर्मेलिटी हटा दी ना, तो उनकी बोलती बंद नहीं हो रही। इतनी बातें सीखी मैंने उनसे, लेकिन मैंने जो बात सीखी जिसने मुझे बहुत डराया पता क्या थी, उसमें से तकरीबन 50-60 बच्चियों ने एक ही सवाल पूछा, What do you do if you feel alone? मैं फैमिली में तो हूँ, मेरे पेरेंट्स तो हैं, मेरी बहन तो है, लेकिन मुझे लगता है मैं हमेशा अकेली हूँ, मुझे लगता है मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? और फिर मुझे एक बच्ची ने पूछा होता तो ठीक है, मैं कहता कोई बात बता देता उसको, दूसरी ने पूछा, तीसरी ने पूछा, चौथी ने पूछा, फ्रंट सेक्शन में पूछा, बैक सेक्शन में पूछा। मैंने कहा ये तो कुछ और ही मामला है। तो अमेरिका वापस जाने के बाद मैंने फिर कुछ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बात की, कुछ सोशल वर्कर्स से बात की, कुछ टीन काउंसलर्स से बात की कि ये क्या सिचुएशन है। तो एक्चुअली बात सामने आई कि अब हम इस दौर में हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता गया है ना, टीनेजर्स में, कम उम्र के बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन और एक्सट्रीम लोनलीनेस, यानी अपने आप को अकेला समझना कि किसी को मेरी बात समझ नहीं आती, कोई मुझे नहीं समझ सकता, मैं अब बिल्कुल आइसोलेट हो गई हूँ या आइसोलेट हो गया हूँ, उसकी फीलिंग्स बढ़ती चली गई। और दुनिया जहाँ में कम उम्र के बच्चों में सुसाइड बढ़ गई है, और ये भी एक अजाब का ही मंजर है ना। यहाँ पर कहा युद्खिलहु नारन खालिदन फीहा, अकेला उसको आग में जलाया जाएगा, यानी अकेलापन भी एक तरह की आग है, अकेलापन भी एक तरह का अजाब है। यहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाला गया और फिर उसके बाद उनकी तस्कीन के लिए, उनको सुकून, जन्नत में सुकून नहीं था, इसीलिए कहा खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, आप और आपकी जौज अब जन्नत में सुकून पाए, क्योंकि अकेलेपन में सुकून नहीं था। और कहा तुम्हें अजवाज बनाया ताकि तुम एक दूसरे में सुकून ढूंढ सको। तो अकेलेपन से सुकून चला जाता है। तो यहां पर अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ बहुत ही बारीक अल्फाज में इस हिकमत की तरफ इशारा किया। अच्छा,
1: सब्सक्राइब नाउ टू द बेगिना यूट्यूब चैनल to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: Ye sawal us rasool ko hi kyun chuna? Kisi ne mujhse aake pucha tha, acha Allah ne Arab rasool kyun chuna? Chinese kyun nahi chuna? Afriki kyun nahi chuna? European kyun nahi chuna? Falana kyun nahi chuna? Iska jawab Allah ke haan ek asada sa jawab hai, Allahu yastafi. That's it. बात खत्म। यहूद ने कहा कि ये तो हमारे पास तो खास पेपर्स हैं कि रसूल हमारे यहाँ ही आता है, ये तो इनके पास तो पेपर वर्क नहीं है, ये तो बनू इस्माइल से हैं, इनके पास तो सिटीजनशिप नहीं है रिसालत की, इनके पास कैसे आ गया, ऐसे कैसे कबूल कर लें? उनका मसला भी क्या था कि वो अरब है और वो बनू इस्माइल में से नहीं है।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: A Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Memorize the morning and evening adhkar, reciting these protective prayers daily to build a mental shield against anxiety and keep your heart at peace. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
6: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
7: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
8: The seven kinds of people whom Allah will shade with His shade on the day when there will be no shade except His are: a just ruler, a young man who grows up worshipping his Lord, a man whose heart is attached to the mosque, two men who love one another for the sake of Allah and meet and part on that basis, a man who is called by a woman of rank and beauty to fornicate and he says, "I fear Allah." A man who gives in charity and conceals it to such an extent that his left hand does not know what his right hand gives. And finally, a man who remembers Allah when he is alone and his eyes fill up with tears.
9: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit UKIM.org.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
2: Last time on Aakhri Mojza.
3: यानी अकेलापन भी एक तरह की आग है, अकेलापन भी एक तरह का अजाब है। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाला गया और फिर उसके बाद उनकी तस्कीन के लिए उनको सुकून, जन्नत में सुकून नहीं था, इसीलिए कहा खलकलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, आप और आपकी ज़ौज अब जन्नत में सुकून पाए, क्योंकि अकेलेपन में सुकून नहीं था। और कहा तुम्हें अजवाज बनाया ताकि तुम एक दूसरे में सुकून ढूंढ सको, तो अकेलेपन से सुकून चला जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ बहुत ही बारीक अल्फाज में इस हिकमत की तरफ इशारा किया। अच्छा,

ये बड़ी प्यारी मिसाल है और ये ज़रा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं ये बात आपके सामने वाज़े तरीके से पेश कर सकूँ। ये हैं दो आयात, दोनों मदनी आयात हैं, एक आले इमरान से है और एक सूरह हदीद से है, और तकरीबन बात दोनों में एक ही हो रही है। वसारिउ इला मग़फिरति मिन रब्बिकुम, जल्दी करो एक मग़फिरत की तरफ जो तुम्हारे रब से आती है, अपने रब से आने वाली मग़फिरत की तरफ जल्दी करो। व जन्नतिन, और ऐसी जन्नत की तरफ जल्दी करो। अर्दुहा समावात वल अर्द, जिसका साइज आसमानों और ज़मीन के बराबर है। आसमानों और ज़मीन के बराबर है। आपको मालूम होगा आसमान कितने हैं, सात आसमान। सात नहीं कहा लेकिन समझ में आ जाती है बात, कहे बगैर सात आसमानों की बात हो रही है, जन्नत के की वसत की बात हो रही है। ऐसी जन्नत की तरफ भागो जिसकी वसत कितनी है, सातों आसमान और ज़मीन के बराबर। उद्दत लिलमुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। ठीक है जी, ये है आले इमरान की आयत, मुख्तसर सा तर्जुमा। अब आते हैं हदीद में, तकरीबन वही बात लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ। सारीउ से शुरू नहीं हो रही बात, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पर। क्या कहा है अल्लाह ताला ने, साबिकू, सारीउ नहीं कहा, साबिकू कहा है। सबकत ले जाओ एक दूसरे से, एक दूसरे से रेस लगाओ, दौड़ लगाओ। पिछली दफ़ा क्या कहा था, जल्दी करो, जल्दी करो। दूसरे में कहा क्या कहा है, सबकत ले जाओ, दौड़ करो, दौड़ लगाओ। पहला फ़र्क, देखते हैं कोई और फ़र्क होंगे कि नहीं। इला मग़फिरत मिन रब्बिकुम, जैसे पहले था, किसकी तरफ दौड़ लगाओ, ऐसी माफ़ी की तरफ, ऐसी मग़फिरत की तरफ जो तुम्हारे रब से आती है। वो जन्नतिन, और ऐसी जन्नत की तरफ, अर्दुहा, जिसकी वसत, जिसका साइज, कअर्दिस्समाई वल अर्द, इसकी वसत तकरीबन, अब मैं तर्जुमा गलत तर्जुमा पहले करूँगा, इसकी वसत तकरीबन आसमान और ज़मीन के जैसी है। आसमान और ज़मीन, पिछली दफ़ा क्या कहा था, सारे आसमानों और ज़मीन की बात थी ना। अब कहा है अस्समा, अस्समा वाहिद या जमा है, जमा है। और एक और फ़र्क भी है, पहली दफ़ा कहा था इसका साइज सातों आसमान के बराबर है, लेकिन यहां कुछ अजीब बात कह दी, इसका साइज तकरीबन उसकी तरह है, किसकी तरह है, आसमान और ज़मीन के बराबर। अब बात अब समझ नहीं आ रही, अगर सात आसमान के बराबर है तो तकरीबन एक आसमान और ज़मीन के बराबर कैसे है, कुछ बात कंफ्यूजिंग होगी। अच्छा, आखिर में कहा था उद्दत लिलमुत्तकीन, पहली दफ़ा किसके लिए तैयार की गई है जन्नत, तकवे वालों के लिए। ठीक है, यहां कहा है उद्दत लिल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही, ये ऐसे लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाए। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है, ख़ास इनाम है। फ़ज़ल कहते हैं जो इजाफ़ी चीज़ होती है, जो आपने उजरत में कमाई नहीं हो उसके मजीद हो, ये मजीद एक एहसान है अल्लाह ताला की तरफ से, इसे फ़ज़ल कहते हैं। सो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा एहसान है, जो जिसको चाहे वो दे। वल्लाहु ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, और मजीद देने वाला, मजीद ज़्यादा बरकत देने वाला, बहुत ज़्यादा देने वाला, उसकी इस्तेआत रखने वाला तो वही अल्लाह ही है। वल्लाहु ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एक जैसी हैं और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब शुरू से बात करते हैं दोबारा। आपको जॉब पर जाना है, आप थोड़ी देर से उठे सुबह को, आप रेस लगा रहे हो या जल्दी कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, आपको कोई फिक्र नहीं कोई और जल्दी उठा या नहीं उठा, आपको किसी और की फिक्र नहीं है, आपको अपनी फिक्र है, आप खुद मोटिवेटेड हो कि आपने क्लास पे पहले पहुंचना है। ठीक है, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जब उनको एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाए ना, उनको ये फिक्र नहीं होती और कोई क्या कर रहा है, और कोई सो रहा है, और कोई उठा हुआ है, और कोई जल्दी कर रहा है, और कोई आहिस्ता कर रहा है, मुझे जल्दी करनी है, उसको और किसी की, वो कोई किसी और को देख नहीं रहा होता, वो खुद ही से मोटिवेट हुआ होता है। और ऐसे लोग, उनकी उन सब में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि उनके सामने एक गोल होता है और वो उस गोल पे, उस हदफ पे वो इतने फोकस हो जाते हैं, इतने मुर्तकिज़ हो जाते हैं कि बाकी लोग उनको नज़र नहीं आते, उनको कोई कंपेरिसन नहीं करना होता एक दूसरे की, इस ये क्या कर रहा है, ये आगे निकल गया, ये पीछे रह गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा उसको, बस अपना गोल नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप दौड़ लगाने की बात करते हो तो दौड़ लगाने में कुछ लोग तो हैं जिनको बस गोल नज़र आ रहा है, लेकिन और लोग हैं जो कहते हैं यार ये तो आगे निकल गया, मुझे भी आगे निकलना चाहिए,
बाकी सारे तेज गाड़ी चला रहे हैं, मैं आहिस्ता चला रहा हूँ, मुझे भी थोड़ी तेज करनी चाहिए, ठीक है ना। सारे उस दुकान पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे भी वहां जाके करना चाहिए। सारी लाइनें इस रेस्टोरेंट में लगी हुई हैं, वो रेस्टोरेंट खाली है, मुझे भी वहां जाके खाना चाहिए। यानी आप बाकियों को देख के आपने भी दौड़ में शिरकत कर ली, ठीक है। तो नफ्सियाती तौर पे एक शख्स है जो बाकियों को देख के थोड़ा इंस्पायर हो गया या उनको कॉपी कर रहा है, और दूसरा जो है वो अपने तौर से उसने इनिशिएटिव लिया। तो कौन सी आयत में अपनी तौर से इनिशिएटिव ज्यादा है? पहली आयत, क्योंकि वो खुद से क्या कर रहा है, जल्दी कर रहा है, खुद से जल्दी कर रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात, आखिर की तरफ आते हैं, फिर दरमियान में आएंगे। आखिर में अल्लाह ताला ने कहा जिनसे जल्दी करने को कहा है, वो कैसी, किसके लिए वो जन्नत बनाई है? मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन। अब मैं सवाल, मुश्किल सवाल है, क्या तमाम मुसलमान मुत्तकीन हैं? ना, यानी ये तमाम मुसलमानों के बारे में बात नहीं हो रही, मुसलमानों के ग्रोह में से एक सबसेट जिसे कहते हैं ना, एक उसकी कम नस्बत है, उनके बारे में बात हो रही है। अब तादाद इन लोगों की कम हो गई, ठीक है। अब इससे अगली आयत में इन मुत्तकीन के बारे में कुछ मजीद बातें बताई जाएंगी, ये कैसे मुत्तकीन है। कहा अल-मुत्तकीन अल्लज़ीन युन्फिकूना फिस-सर्राई वद-दर्रा, ऐसे मुत्तकीन जो खुलेआम, जो आसानी के वक्त पे और मुश्किल के वक्त पे खर्च करते हैं। यानी सिर्फ मुत्तकीन ही नहीं है, खर्च करने के मामले में, सखावत के मामले में, आसानी हो या मुश्किल हो, वो हाथ पीछे नहीं रोकते। अब ये इनकी तादाद बढ़ गई या कम हो गई? और मजीद कम हुई ना। फिर कहा वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, और ना सिर्फ खर्च करते हैं हर हाल में, अपने गुस्से को पी भी जाते हैं, अपने गुस्से को उगल जाते हैं। तादाद कम हो गई या ज्यादा हो गई? और कम हो गई। और एक मजीद फिल्टर लग, सही बात कह रही हूं, और एक फिल्टर लग गया, अल-काज़िमीन अल-ग़ैज़। फिर उसके बाद मजीद कहा अल-आफ़ीना अन-नास, और मोहब्बत से लोगों को माफ करते हैं। गुस्से को पी जाना एक बात है, किसी ने आपके साथ कुछ किया, गलती की, आप रेस्टोरेंट में थे, वेटर ने आपके ऊपर गलती से पानी गिरा दिया, इट्स ओके सर, सॉरी सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, गुस्सा तो आप पी गए, लेकिन शक्ल पे अभी भी अनोयंस है, शक्ल पे अभी भी कुछ एजिटेशन है। अल-आफ़ीना अन-नास है, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, देखो आप डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा करो आप मेरे साथ बैठ के ये लंच मेरे साथ खा लो आप। यानी आपने सिर्फ गुस्सा नहीं पिया, आपने मोहब्बत से माफ भी किया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक मशहूर रिवायत है, कुछ कहते हैं हसन से मुतालिक है रज़ी अल्लाह अन्हु, कि उनका एक गुलाम था, वो उनको पानी दे रहा था तो उसने जग गिरा दिया उनके पाँव के ऊपर, पाँव जख्मी कर दिया। तो उसने ये आयत पढ़ ली, वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़, गुस्से को पीने वाले, कुरान का हवाला है, कुरान बचाने के लिए है। तो उन्होंने कहा कसम तू गई थी, मैंने गुस्सा पी लिया। फिर उन्होंने कहा अगली आयत का हिस्सा उन्होंने पढ़ा, गुलाम ने, कहते हैं वल-आफ़ीना अन-नास, और लोगों को जो मोहब्बत से माफ भी करते हैं। देखा चलो आफा तुक, तुझे माफ भी कर दिया। अब आयत का आखिरी हिस्सा है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वाले, बेहतरीन करने वालों से मोहब्बत करता है। जा तू आजाद हो गया। तो वो तीन, अब मुत्तकीन से बात शुरू हुई थी, वो पहले ही सारे मुसलमान नहीं हैं। अब मुत्तकीन में से ऐसे जो हर सूरत हाल में खर्च करते हैं कम हो गए, फिर उसके बाद गुस्सा भी पीते हैं और कम हो गए, फिर लोगों को मोहब्बत से माफ़ भी करते हैं और भी कम हो गए, और हर वक्त एहसान का मुजाहरा करते हैं और भी कम हो गए। तो ये वाली जो जन्नत है ना, ये बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड किस्म के लोगों की है, जो खुद ही से जल्दी करते हैं, उनके अंदर खुद ही कोई आग लगी हुई है जिसको उसको उनको ड्राइव करती है। ये खास लोगों के बारे में बात कही जा रही है, या आम के बारे में, अवाम के बारे में ये बात नहीं है, खवास के बारे में बात है, ठीक है। अभी आसमानों के बारे में आखिर में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा तकाबुल कर लें दूसरी तरफ। शुरू में कहा था साबिकू, दूसरी आयत में दौड़ लगाओ, दौड़ लगाने वाले दूसरे को देख के करते हैं कि खुद से करते हैं? दूसरे को देख के करते हैं। तो ये इंसानियत की अक्सरियत नहीं है, उसने ये डिग्री की मैं भी यही कर लूं, उसने ऐसे कपड़े पहने मैं भी यही पहन लूं। यानी यही तो हमारी एक टेंडेंसी है कॉपी करने की, जिससे इतनी सारी मार्केटिंग चलती है, इतनी सारी एडवर्टाइजिंग चलती है,
हम दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं, दूसरे को देख के हम कहते हैं हम भी ये करना चाहते हैं। कितने करोड़ों लाखों अरबों बच्चे दुनिया में होंगे जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल खरीदने गए होंगे, यू नो कितनी खिड़कियां टूटी होंगी दुनिया में, राइट? क्योंकि हम देख के हम भी अब हमारे भी ख्वाब आ गए। ऐसा ही होता है ना, साबिकू इला जन्नत मिन रब्बिकुम व जन्नत अर्दुहा का अर्द समाई वल अर्द। पर यहां कहा किसके लिए जन्नत? ये वाली जन्नत मुत्तकीन के लिए नहीं, कहा इन उन सब के लिए जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। ये कम लोग हैं या ज्यादा लोग हैं? इसमें तो मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। और ये भी नहीं कहा जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, कहा अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए। तो इसमें हम तो वैसे भी तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, लेकिन यहां पर बात उन लोगों की भी हो गई जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा पर ईमान लाए, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आदम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। तमाम रसूल जिनके बारे में अल्लाह ने हमें बताया, वमिनहुम मन लम नक़्सुसहुम अलैक, और उनमें से ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमने आपको नहीं बताया, उन सब को शामिल कर दिया। तो दूसरी आयत में कम लोगों की बात हो रही है या ज़्यादा की? शुरू से साबिकों के लफ्ज़ में ज़्यादा की तरफ इशारा, और आखिर में जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और उसके तमाम रसूलों पर। अच्छा, उनमें मजीद कोई कैद डाली कि सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है बल्कि उनको अपना गुस्सा भी पीना होगा, तकवा भी दिखाना होगा और नमाजें भी कायम करनी होंगी, और कोई मजीद यहाँ पर शर्तें डाली हैं कि नहीं? नहीं डाली। तो मालूम ऐसा होता है कि जो दूसरी जन्नत है ना, इसका दरवाज़ा कुछ ज़्यादा कुशादा खुला हुआ है, लग रहा है ना? अब इसका जो दरवाज़ा कुशादा खुला हुआ है, अब आसमान की तरफ आते हैं, फिर इन आयात को समझेंगे। पहली आयत में कितने आसमानों का जिक्र था? सात आसमान। आसान सा सवाल है, सात आसमान ज्यादा बड़े हैं या एक? गलत, एक बड़ा है। अब समझाता हूं क्यों। अरबी में अस्समा का लफ्ज जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो आसमान उसका तर्जुमा सही नहीं है। अस्समा जब इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं हर वो चीज जो ऊपर है। ऊपर के लिए लफ्ज़ क्या होगा? अस्समा। जब आपने सात आसमान कहा तो ऊपर में से सिर्फ सात आसमान की बात हो रही है, लेकिन ऊपर जो कुछ भी है उसको हम क्या कहेंगे? अस्समा। अच्छा, उसमें कैद डालनी हो, उनमें से किसी एक आसमान की बात करनी हो, हम कहेंगे अस्समा अद्दुनिया, सबसे नीचे वाला आसमान, यानी उसमें कोई मजीद इजाफा करना पड़ेगा। अस्समा अस्साबिया, सातवां आसमान। अस्समा अस्थानिया, दूसरा आसमान। अस्समा अस्थालिथा, तीसरा आसमान। लेकिन अगर आप कहें सिर्फ अस्समा, तो इससे क्या मुराद है? जो कुछ भी ऊपर है। अब ये अल्फाज जो कुछ भी ऊपर है, सब कुछ जो ऊपर है, वो ज्यादा वसत रखता है या सात आसमान ज्यादा वसत रखते हैं? जो कुछ भी, यानी नीचे वाली आयत में, हदीद वाली आयत में, इतनी हर लफ्ज में ज्यादा से ज्यादा वसत है कि नहीं? और इसीलिए, क्योंकि जो कुछ भी है उसमें तो फिर अल्लाह ताला के अर्श के बारे में भी बात हो गई, तो उसको तो आप इक्वेशन नहीं बना सकते, उसको बराबर नहीं कर सकते जन्नत के, क्योंकि उसके मुकाबले में तो जन्नत भी कुछ नहीं है। तो क्या किया? का अर्ज समा, उसकी तरह से कुछ, अगर तुम समझ लो, बराबर नहीं। का अर्द समा वल अर्द। अच्छा, यहां पर फिर यह सवाल पैदा होता है कि इन दोनों आयात में से अल्लाह ताला की रहमत इंसानियत पर ज्यादा किस में है? निचली वाली में है ना। तो देखिए, निचली वाली में एक कलाम का इजाफा है जो पहली आयत में नहीं है। कहते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तरफ से ज्यादा है, जो जिसको चाहे देता है, अल्लाह ही है ज्यादा देने वाला। सुभान अल्लाह। एक तो बात हो, मैंने एक स्क्रीन पर यह आयत और ये आयत एक दूसरे के नीचे रख दी कि हम तकाबुल कर सकें, लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ था तो ये एक आयत दूसरी आयत के साथ नाजिल हुई थी क्या? एक आयत एक किसी साल में, एक आयत किसी और साल में, एक आयत जब सहाबी किरात कर रहे हैं तो वो सूरह आले इमरान की किरात कर रहे हैं, उसमें वो आयत आ रही है, एक सूरह हदीद की किरात कर रहे हैं तो उसमें वो आयत आ रही है। जहन में तो आएगा इस तरह की एक आयत याद आती है, लेकिन हम तो, मैं तो यहां पर स्क्रीन पे दिखा के एक एक लफ्ज को कंपेयर करके, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं,
हमें तो पढ़ना आता है, हमें अल्फाज देखने आते हैं, हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसको लाल कर दिया, उसको काला रख दिया, ये मैं कर सकता हूं। वो लोग करते थे ये चीजें, उनके लिए कुरान तो सुनी हुई चीज थी ना, लिखी हुई चीज थोड़ी थी, सुनी हुई चीज थी। इस किस्म की बारीक दिक्कत, इतना नाजुक कलाम कि एक एक चीज का, एक एक लफ्ज का लिहाज रखा गया हो, वो भी ऐसे कलाम में जो लिखा हुआ नहीं पेश किया गया, बोला हुआ पेश किया गया, इंसान की सलाहियत से कितना दूर है, कितना दूर है। थोड़ा सा भी तदब्बुर अल्लाह ताला के कलाम पर इंसान कर लेना, उसको ये बात वाजे हो जाए, ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, चुनने के लिए दो लफ्ज। सूरतुल हज के आखिर में अल्लाह ताला ने चुनने के लिए, अरबी में चुनने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इख्तियार करना, इख्तारा या इख्तियारो, इख्तियार, इख्तियार करना भी अरबी का लफ्ज है। इस्तफा, उसको भी चुनना कहते हैं। इज्तबा, उसको भी चुनना कहते हैं। अरबी में ये तीनों अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह ताला की जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी ना पहाड़ी पर, तूर पर, तो उन्होंने उनसे कहा था अन अख्तरतुका, मैंने आपको चुन लिया, मैंने आपको चुन लिया। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? इख्तियार। इख्तियार, इख्तियार से मुराद है ऐसी चीज चुनना जिसमें खैर हो। इख्तियार खैर से निकला है, खैर के माने हम सब जानते हैं। इख्तियार क्या है? ऐसी चीज को चुनना जिसमें खैर हो। इस लफ्ज का इस्तेमाल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्यों किया गया? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल

0: डाल देता हूँ। आप में से किन कौन हैं जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं?
1: अच्छा
0: ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के रिस्क में इजाफा करे। फर्ज करें कि आपकी जॉब है, आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपकी जॉब है आपने इंटरव्यू लेना है, अकाउंटेंट की जॉब खुली है, 5-6 लोग आए हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए और आपने इंटरव्यू लेना है जी। ठीक है, पहला आया उसने इंटरव्यू दिया, फारिग किया उसे, दूसरा आया कि हम रابطہ करेंगे, तीसरा चौथा पांचवा, फिर आपका बॉस आके आपसे कहता है तो क्या ख्याल है किस कैंडिडेट को लें, तो आप कहें वो तीसरा वाला सही था, तो फिर वो आपसे पूछता है क्यों, कहते हैं उसने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, उसकी जेब में स्निकर्स थी। अगर आपने अकाउंटेंट को हायर करना है किस बुनियाद पे, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसने अगर आपने उसको कोई कॉम्पिटेंसी टेस्ट दिया है, कोई साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन की है, सारी चीज़ें देख के ही आपने हायर करना है ना, उसमें इस्तीफा तो नहीं चलेगा ना। कभी कभी ऐसा इख्तियार करना पड़ता है जिससे इख्तियार का यानी आपकी अपनी चॉइस का ताल्लुक नहीं होता, इम्तियाज़ का ताल्लुक होता है। जैसे स्टूडेंट्स पिक किए जाते हैं इम्तियाज़ की बुनियाद, खुसूसियात होती हैं, को क्वालिफिकेशंस होती हैं, ऐसी सिलेक्शन को कहा जाता है इज्तिबा। जबू से निकला है, जबू कहते हैं अरबी में टैक्स कलेक्शन को, असल में खराज जो कलेक्ट किया जाता है ना वो हर एक से नहीं किया जाता, जिसके पास क्वालिफाइड इनकम होती है, इतने पैसे होते हैं कि उससे अखज़ किया जाए, वो फिर मुजतबा हो जाता है तो और उससे जबू लिया जाता है। तो बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक लफ्ज़ है, कोई भी आप मर्जी का चुने उसके लिए इस्तीफ़ा, और जब किसी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर आप चुने, खास मकसद के लिए चुने, एक सारे फैक्टर्स देख के आप चुने, उसको कहा जाएगा इज्तिबा। मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, शौहर ने कुछ गुस्से में आके कुछ बात कह दी बहुत ही ज्यादा बुरी, मुझे पता था तुमसे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद एकदम से, पहले तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ रहा था, जैसे ही शौहर ने ये बात कही तो बीवी के साथ क्या हुआ,
2: क्या
1: वॉल्यूम एकदम से गिर गया, वो चुप हो गई, रोती हुई कमरे में चली गई, या फिर वो शौहर ने आवाज उठाई कोई और गुस्से में बात की, वो बिल्कुल खामोश हो गई, फिर वो आके उसको मनाने के लिए कहता है देखो
3: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
4: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
5: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.